0: करने गायत्री है। श्याम है, दिनेशा, पोएडा, इन्न तरी चाके अपन पोएडा।
1: I'm going to put it.